0: दोनों से
1: बोले आप
0: सो शी सेड टू मी
1: मान्य सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं मान्य सदस्य
0: मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ
1: प्रतिपक्ष के नेता है
0: आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू
1: मान्य प्रतिपक्ष के नेता मैं आपसे आग्रह करता हूँ
0: नाम ही नहीं लिया नहीं,
1: आप सुनिए मेरी बात एक मिनट माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं
0: मैं कर रहा हूं सर अब मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर
1: ठीक रहेगा
0: सर आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर आई विल लेट मी कैरी ऑन सर सो आई सेड सर ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है उसके लिए सच्चाई मीठी होती है ट्रूथ इज स्वीट लाइक गांधी जी सेड द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? What about this other type of person who is not a student?

0: she said? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest, proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि ये student है और फिर ये idiot भी है. मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी category कहाँ जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त. इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. Now, so Speaker sir,
1: माननीय विपक्ष के नेता है आप.
0: नाउ सुपर
1: सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें.
0: ओके सर, आगे जा रहा हूं. सो स्पीकर सर, आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क, एंड दिस फ्रेमवर्क केम टू मी फ्रॉम अ 18 ईयर ओल्ड गर्ल, लवली स्टूडेंट, प्रोबेबली वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इन द छात्रों की गूंज प्रोग्राम्स. सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. और ये सच है, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. मोर मनी is spent on one exam, on one exam, then is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 ghante students padhte hain, saalon ke liye padhte hain. Sir, please.
2: Sir, not right. We will not allow anybody to go. This is the point.
3: राहुल गांधी जी ऑन पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते हैं, वो यहां से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है. अभी जो शब्द मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं. वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है. और जो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए. और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे
0: सर,
3: वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया।
0: आपके आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया,
3: रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में आन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है,
1: आप भी चले।
3: और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो आन पार्लियामेंट्री वर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए, इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं, बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है?
1: माननीय सदस्य
0: स्पीकर सर,
1: आप संसद
0: सर, मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनी बॉडी दैट,
1: आप कोई ऐसा शब्द बोले,
0: आई एम नॉट कॉलिंग एनी बॉडी दैट सर। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरा शब्द दे देता हूं, मैं दूसरा दे देता हूं सर।
1: वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय उसको निकाल देंगे।
0: स्टूडेंट को हम
1: आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है
0: सर, इडियट शब्द नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज ना, लेट मी सर बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द,
1: नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले
0: सर,
1: आपसे ये मेरी अपेक्षा
0: सर, बट आप सर, आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर,
1: आप विधेयक पर बोले, मैं हाउस को ऑर्डर में रखूंगा क्या?
0: Find this young lady gave me a beautiful framework, three categories of people. I found this to be because of order laiye sir,
2: you are not allowing that, let me speak.
3: सम्मान देते हैं हम, इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं, अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया, ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया, और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया, हम आपके आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है, हम तो सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना भाषण को कंटिन्यू कीजिए, आप अपना भाषण कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा इतना ही अनुरोध है।
4: नहीं बोलना चाहते तो आगे बढ़ते हैं।
1: आप नहीं बोलना चाहते माननीय नेता? हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे आग्रह कर दिया है कि आप असंसदीय शब्दों का उपयोग न करें, सदन में बोले, कोई आपत्ति नहीं बोले आप?

0: नहीं आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं, अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है, आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है।
1: देखिए सर, सर सर, हाउस सर, टू कीप हाउस इन ऑर्डर सर इज योर एस्टीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, the entire opposition starts to shout.
2: मैं फिर से कहता हूं राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहां तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने, और आज तो आपने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया, ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति है, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
1: सर इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट अस जस्ट बी प्रिसाइज, इट इज अनपार्लियामेंट्री फॉर मी टू यूज दैट वर्ड अगेंस्ट अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
3: ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया।
0: एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर
1: मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं।
0: नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल,
1: ये फिर से आ गए।

0: रक्षा मंत्री जी बोलना क्या एक मिनट देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो
1: सर मैंने हिल नहीं किया,
0: हिल नहीं किसी हिल नहीं का अगर कुछ
1: बोला नहीं, मैंने हिल नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने हिल नहीं किया है।
0: बोलिए नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं, पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, बोला है सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे।
2: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए।
0: अपना व्यवस्था से निकल जाता है।
2: ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए।
3: सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, there is one category of people called student vidyarthi jo vidya ka arth dhoondta hai, and then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures, so the student is never scared of the truth, he loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, ईमानदार है, वो बाईपास हो जाता है। तो दे आर अपसेट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एंड आवर सिस्टम इज टेरेबल, इट्स टेरेबल, इट्स क्रूअल। लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज आर टेकन फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल, एवरीथिंग हैज बीन प्राइवेटाइज्ड, पेपर लीक्स, इन वन एग्जाम समथिंग हैपन्स, इन अनदर एग्जाम समथिंग एल्स हैपन्स, some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam, rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going, it's a brutal, terrible system, it's an extortion system, I said it in my meetings. And it's a system that has been captured, it's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath

0: not here today. The Home Minister is not here today because he is not here today because he is scared.
1: देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही, आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं
0: द होम मिनिस्टर सर, द होम मिनिस्टर
1: नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा हो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, ये व्यवस्था रहती है सदन के अंदर।
0: सर द होम मिनिस्टर सर द होम मिनिस्टर ऑथराइज the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
1: क्या बोल रहे
2: सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया?
0: व्हाट इज गोइंग ऑन?
2: कैसे बोल सकते हैं आप इतना गलत बात करते हैं? ऐसा मत बोले राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकलना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है।
3: How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं?

0: As the stormy Lok Sabha session continues, leader of the opposition Rahul Gandhi escalated his attack by outlining three distinct categories of mindsets, contrasting peaceful, truth-seeking students with the ruling factions, while alleging massive systematic failures including privatization, reoccurring paper leaks and ideological control of universities by the RSS and ministers like Dharmendra Pradhan.
1: जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
2: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है, एक ही नहीं ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए, आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, आपका शब्द बहुत गलत बात है।
3: देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठी चार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष अखिलेश नहीं बिका, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें ये उचित नहीं है,
4: ठीक है सर,
3: उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
4: को गोली मारी जाती है,
2: ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं, हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहां शांति सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा, आज मैं कहूंगा राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस में बोल रहे हैं, आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है, बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर, यहां जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है, आपने स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है, यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल, मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोले, कैसे बोला है, आप कैसे बोल सकते हैं माफी मांगिए, ऐसा नहीं चल सकता है अध्यक्ष, चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा, हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं, नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं है सर, वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है, ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब।
3: नहीं बोलिए आप, लेकिन
2: सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज।
3: मेरा मानना यह है कि आपने जो तथ्य की है, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए।
2: बोलने तो दीजिए सर।
3: आप बोलिए ना।
2: बोलने दीजिए सर।
3: कौन मना कौन कर रहा है बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर।
2: मैं बोल सकता हूं सर।
3: हाँ बोल सकते हैं आप।
2: सदन तो कटाइए सर इनको। बोल सकते हैं स्पीकर सर। स्पीकर सर द यूज ऑफ फोर्स, द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज बाय द होम मिनिस्टर। इट कैन नॉट बी ऑथराइज आइदर बाय द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर।
3: ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो no.

0: Well, this is the Lok Sabha session as it continues. Leader of the opposition, Rahul Gandhi, has escalated his attacks by outlining three district categories, which we just told you. And as the Lok Sabha discussion descended into further, opposition lawmakers erupted into chants, questioning whose orders led to the police firing on protesters, while Union Minister Rijiju fiercely demanded an unconditional apology from Rahul Gandhi for directly blaming the Home Minister without formal evidence or inquiry reports.
1: कॉपी निकालिए आप बताइए किसने आपको बताया कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है कौन सा अधिकारी आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए ऐसा नहीं हो सकता है चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए ऐसा नहीं हो सकता ये भारत का संसद है यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते ऐसा नहीं हो सकता आप परमिशन नहीं दे सकते
2: आप कंक्लूड कर दीजिए नो माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के बिना सबूतों के बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं नियम प्रक्रिया होती है ये मेरे आपसे आग्रह नो नियम होता है आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए आप बिना नोटिस के बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते आप आपने बिना इंक्वायरी बिना कोई इंक्वायरी के जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते आप किसी पे नहीं लगा सकते एक सदस्य भी नहीं लगा सकते आप नहीं बोलना चाहते मैं नियमों से बात कर रहा हूं नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा मैं नियमों की फ्रीज नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है इतने गुस्से में मत होइए आप सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता ऐसा नहीं है नहीं
3: ही नॉट गिविंग मी माइक
1: आप
3: माइक तो दीजिए माइक तो दीजिए
2: माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप
1: माइक नहीं है
3: माइक नहीं है सर
2: माइक तो चालू है
4: बंद कर
2: आप मानिए बोलो लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप
3: मैं बोल सकता हूं सर
2: आप बोल सकते हैं लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं
3: उनको आप बैठाइए सर
2: नो आप बोलना नहीं चाहते मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है आप अगर सदन के अंदर सदन के मैंने आपको कभी नहीं रोका लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं आप प्रतिपक्ष के नेता इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पर बोलें इस विधेयक पर बोलें आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते तथ्य पर बोलना नहीं चाहते आप सदन नो
0: Well, as the Lok Sabha descended into an absolute chaos, leader of the opposition party Rahul Gandhi sparked a fierce legislative showdown by contrasting peaceful, truth-seeking students with arrogant mindsets and accusing the RSS and government ministers of ideological control and systematic paper leaks. Well, the session boiled over when Rahul Gandhi launched a scathing attack, alleging that the Home Minister authorized police firing on student protesters, triggering furious demands for an unconditional apology from Kiran Rijiju.
2: ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर. सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है. आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे. नहीं चाहते सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
0: As the Lok Sabha turned into complete chaos, opposition leader Rahul Gandhi got fierce fight with the ruling party and the speaker over unverified claims against top government leaders. The stormy session started when Rahul Gandhi shared a talk with the student protesters, praising them as honest truth seekers while criticizing

0: We start with updates from India. A high-octane debate on the anti-paper leak bill has played out in the parliament. The lower house erupted in chaos as soon as the leader of the opposition, Rahul Gandhi, took the floor. He took a sharp swipe at the RSS and the Union Home Minister, Amit Shah, resulting in repeated objections from the Treasury benches. Rahul began his speech by explaining three categories of people, but as soon as he mentioned one category, the opposition lawmakers started raising objections and demanded the speaker to expunge the word. Union Parliamentary Affairs Minister Kishan is unparliamentary and that Rahul Gandhi should not use it in his remarks.
1: Let's be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists.
0: The Congress MP then shifted his focus on education system. He claimed that education system is captured by the RSS and that Dharmendra Pradhan was just a face of that system.
1: Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be unpacked.
0: Rahul also launched a sharp verbal attack on the Home Minister, Amit Shah. He said that it was Amit Shah who had ordered the police to shoot on students and the use of pellet guns against them.
2: आप बोलना नहीं चाहते सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए
1: ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स सर ही पुट पैलेट्स इनटू द ब्लड ऑफ आवर स्टूडेंट्स ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया to be shot.
0: Now, responding to this, the Minister of Parliamentary Affairs, Kiran Rijiju, asked Rahul Gandhi to talk with responsibility and provide facts about his charge or apologize.
3: How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper.
0: Remember, the opposition has been demanding Prime Minister Modi and the Home Minister Amit Shah to be present within the parliament. The Lok Sabha and the Rajya Sabha faced multiple adjournments during the entire course of the debate today as the opposition and the ruling alliance lawmakers continued to brawl over multiple issues. All right, the Lok Sabha proceedings have now resumed. Let's quickly cut across live to the parliament where the proceedings have resumed after multiple
4: adjournments. आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे जेन जी की जबान में एमआईए हो गया एमआईए मतलब मिसिंग इन एक्शन जो हमारे जेन जी की भाषा है और दूसरा जैसा कल बताया गया कि फोमो फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन और इसलिए ये जा करके वहां बैठे और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पर दर्शाया अपने उठाए जाने का तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले बेआबरू बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले बहुत निकले मेरे अरमान कम निकले यानी वो जो दबे हुए अरमान है सात एलकेएम में जाकर के बसने के और नेता बनने के वो ना जानूं किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे सबके सुझाव भी नोट किए बड़े ध्यान से भी सुना उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि एंड इट वॉज मेड श्योर दैट कैजुअलिटीज डोंट हैपन, लेकिन मुझे लगा बाद में जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ, ये आंकड़ा कहां, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती है कि 150 पेपर लीक, 150 टाइम्स दी पेपर लीक हैपन्ड विच अफेक्टेड 750 करोड़ चिल्ड्रन। आई हैव वेरीफाइड दिस फ्रॉम द रिटन स्क्रिप्ट विच वॉज देयर इन द पार्लियामेंट लास्ट नाइट, वेज आई वॉन्टेड टू एक्चुअली चेक ऑन माई सेल्फ। 150 पेपर लीक्स अफेक्टिंग 750 करोड़ चिल्ड्रन, विच मीन्स 7.5 बिलियन, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट अबाउट 8 बिलियन एंड यू हैव 7 बिलियन।

0: 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है. उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा कोई कार्रवाई नहीं हुई. शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले दो वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए. इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए. शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है. वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 762 टू 1293. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विदाउट एविडेंस. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 51,534 टू 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए, और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच इज अ गेम चेंजर एंड विच शुड हैव हैपेंड एक्चुअली. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था. उसका नॉर्मन क्लेचर भी गलत था. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉर्मन क्लेचर यूज इन द कॉरपोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेज टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट, एंड यू हैड मेड यंग चिल्ड्रन प्रिजनर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स चोजन फॉर देम इन क्लास 12 बाई देयर पेरेंट्स, बाई देयर गार्डियंस, बाई देयर एल्डर्स. एनईपी 2020 हैज लिबरेटेड आर एडोलेसेंट चिल्ड्रन from these subjects that they took up for class 12 and given attitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने, और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं सबूत में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ दी सब्जेक्ट. हेयर वी हैव एंट्री एग्जिट. अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता, तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है. देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री. और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी हवाले से बात हो रही है. एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844. MBBS सीट 51,300 से 1,39,000. पोस्ट ग्रेजुएशन सीट 31,100 से 86,300 तक. अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है. अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, CBI को सौंप दिया गया. तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया, और 12 तारीख को ही CBI दिया. और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा. पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में ट्रायल. एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य पीसी सरकार ने पैदा की। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप्स की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई, हम तीसरे दर्जे पर आज खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि रिपब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी, कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इसको पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज एनएक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी दी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। इन बैल सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ाकर के 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ाकर के 5 साल से 10 साल तक कर दी गई, फाइन 1 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इंप्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ाकर 7 से 10 साल कर दी गई, फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। बहुत सारी यहां बातें की गई, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज रिड्यूस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
1: प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हार गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित माननीय सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं, श्री एन के प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर सौगत राय, दीन कोरिया, नीरज मोरे, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधा कृष्णन, एबी बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मानन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिंह।

सेना मनोज कुमार शशिकांत सेंथिल डीएम कतिर आनंद, मेरा अनुरोध है अगर आप सब अपने अपने संशोधन